0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सकाळ 6टा हेबाकु जाउछि। हिंदी रे संवाद रिले करि प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।

0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सकाळ 6:55 हेबा जाउची संस्कृत रे संवाद रिले कर प्रचार करछु आकाशवाणी दिल्ली रु
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କାଟାକ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट एस्कटॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से

0: अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने

0: 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है

0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: हाँ, भाविले हस लागे। सतरे जीवन केते रहस्यमय, केते कौतूहलपूर्ण। प्रतिक्षण रे बदलु थाए मनिषर भावना। स्वतस्फूर्त भावरे मन भितरकु धसेई पसी आसे नाना प्रकारर अकुहा कथा।

वेलकम बैक म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक हस लुह सुख दुख छाई आलुअर लुचकाली खेल जीवन केते बेले जे वर्ष पर वर्ष अतिक्रम कर जाए जम्मा भी जना पड़े हार जीत्र बाजी रे आमे केबे हारी जाऊ तो आउ केते बेले जीती जाऊ।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: आकाशवाणी एफएम।

0: नमस्कार सुनीता, केमिती अछ? आउ आजी एठी केमिती?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रे रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: वेलकम बैक ट्यून कर चुन म्यूजिकल यो 100.4 आगस फने एफएम रेन बकटक देख सेवेल तक रे रेडियो हम सबर सागर अछि आपन को सहित सो चलची कलाकार अब कलाकार रे आज हमें कथा होछे बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को संपर्क रे। फ्रेंड्स, 1992 मसिया रे बलवान फिल्म माध्यम रे से बॉलीवुड रे प्रवेश करथिले। प्रथम फिल्म रे ही तंको आक्शन स्टाइल दर्शकों को खूब आकर्षित करथिला आउ सेही समय रे बॉलीवुड रो आक्शन फिल्म रो डिमांड अधिक थिला। सुनील शेट्टी तंको शक्तिशाली अभिनय द्वारा खूब शीघ्र लोकप्रिय होई पाइथि। तापरे मोहरा हो, दिलवाले हो, बॉर्डर, धड़कन एमती अनेक सुपरहिट फिल्म रे से निजर अभिनय रो जलवा देखाइथिले। आक्शन सह कॉमेडी ओ भावप्रवण चरित्र रे मध्य से निजर दक्षता प्रमाण करछन्ते। प्रत्येक फिल्म रे तंगा अभिनय आज मध्य दर्शक को मन रे अमर होइ रहछि।
4: एक्चुअली मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्त से की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना?
5: देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जा देव, भूल जा मुझे, भूल जा सब कुछ, भूल जा।
4: अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी।
5: तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त
0: तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
2: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
2: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल

वेलकम बैक टू इनको चिन्ह म्यूजिकल यो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दल से दल तक रे रेडियो वाइब्स बर सागर छ आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स जीवन रे सफलता पाए पई युवा पीढ़ी को मध्य रे आत्मविश्वास आनिबा निहत आवश्यक एक साधना उठे आत्मविश्वास रो अर्थ निजर योग्यता उपरे दृढ़ विश्वास आउ एही शक्ति जहाँ पाखर थाए से सब समस्या समाधान आराम से करी पारी थाए एक साधारण व्यक्ति को असाधारण कार्य करने को प्रेरणा दे थाए तेणु प्रत्येक युवा पीढ़ी मध्य फास्ट तो मुझे कहती भाव आत्मविश्वास दृढ़ होगा दरकार

वेलकम बैक ट्यून कुछ जन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक रेडियो हम सबर सागर अच्छी आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स आत्मविश्वास को दृढ़ करबा कहले एबल व्यक्ति विशेष मानक सह संपर्क रखबा दरकार जे माने सकारात्मक विचार रखि थांते जे कोनसे परिस्थिति रे स्थिर रहंती विचलित केबेले भी होइते नै निहित भाव आशा और दृढ़ विश्वास भाविवा दरकार कि जो कमटा मु आज करना का निश्चय करी मनोबल सब आपर दृढ़ होगा दरकार सब माइंड को स्ट्रंग करने दरकार फल आपत भाव आगक आगक चली पारे

Welcome back to Unkochinu Musical Year 100.4 August 20 FM Rainbow Kadak Delsa Del Tagre Radio Hamsa Bad Sagar Achi Apanko Saita So Chalchi Kichi Katha Kichi Kita Friends, Pratik Chubabudi Madhura Bhasa Nihati Bhabare Koi Bhauchit Pratik Bisho Upare Sampurna Gyano Prapti Hela Pare Eko Sathi Kalochana Kari Samanya Gyano Badai Bara Shreya Mana Kari Bhauchit सबुबेले गोटे निर्धारित लक्ष्य रखा उचित कि बिना लक्ष्य रे जीवनटा वृथा धन हो समय हो शक्ति हो सबकिछि नष्ट होइथाय किंतु जदि आपण माने गोटे श्रृंखलित नियम जीवन जापन को प्रथमे स्थिर करिवे तबे देखिबे समयर सठिक उपयोग होइ परिबो आउ लाइफस्टाइल रे केते चेंजेस आसीबो आउ ए एर परिणाम आपण फ्यूचर रे जहाँ प्रभावित पड़ बा प्रभाव पड़ बा जीवन शैली रे निहित भाव परिवर्तन आनबा

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मो एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: वेलकम बैक टू इनको चिन्ह म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दल से दिल तक रेडियो हम सब सागर छ आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता। फ्रेंड्स, सर्वगुण संपन्न होई केही जन्म नै नथांती। कोनोसी गुटी कार्य को बाछि सेतरो कुशलता निपुणता एवं दक्षता रखिबा नियति दरकार। निजकु भल पाइबा, निजर रुचि को सम्मान करिबा, निजर सुख ओ आनंद को देखि अन्य को सम्मान देबा नियति आवश्यक रहिछि। निजकु केबे हेले नीच बा दुर्बल भावन्तु नै, कहिंकिना सफलता मिलिले गर्व बा असफलता रे निराश हेबा बहुत लोकंकर आदत रहि जाइछि। ए सब कले देखिबे आपण निश्चय आगकु बढ़ी चलिबे। आउ हाँ, आजर युवपीढ़ी केवल निज भविष्यत नुहे देशर आगामी दिन को मध्य गढ़ुचंती। सो फ्रेंड्स, स्वप्न देखंतु, सेथिपाई परिश्रम करंतु, कारण आजर स्वप्न आसंता कालीर सत्य निहाती भावे होइथाय। एडी शेष करछु आजर किछि कथा किछि गीत प्रोग्राम। स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दिल से तेल थाक।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह,

बसपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक टू कुचिंद म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक रे रेडियो हम सवार सागर अच्छे आप सहित सो चलती आज चर्चा रे आज चर्चा आपण मन गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुझे रखी थी कि पिला समय देवा पेरेन्ट्स मान के जरूरी मो पाखे प्रथम मेसेज टी आज पहुंच जाइए देखा मेसेज टी किए कर क्योंटी कर पूजा मेसेज कर भुवनेश्वर से लिखिंट आज व्यस्त जीवन में आम समस्ते काम टंका और दायित्व व्यस्त हो जाइछु किंतु एई भिड़ मध्य पिला समय देवा बहुत जरूरी निवरे कहीं पाने केवल आम भविष्य नुह से आज प्रेम आश्रय और मार्गदर्शन चाहती जदि आम से आलोचना करवा खेल भावना को शुणा आ समय देवा तेबे से माने आत्मविश्वासी और सुस्थ मनोबल नहीं बढ़े बहुत बढ़िया कथा पूजा लिखिंट से कहते कि समय हूँ सबुठ बड़ उपहार टंका अधिक मूल्यवान तेणु आसतु आम पा प्रेम और समय दे से जीवन को सुंदर करवा निहत भाव में बहुत बढ़िया मेसेज टी पूजा भुवनेश्वर मेसेज करते तो फ्रेंड्स पिला पितामाता केवल अभिभावक नुहति से प्रथम बंधु प्रथम शिक्षक प्रथम प्रेरणा मध्य जेतेबेले पिला कोनोसी भूल करे ताको गाली कोलिबा बदल रे बुझाइबा पई चेष्टा करंतु काहेकि ना जेतेबेले पिलाटी बुझी जीव तबे से केबे हेले भी सेही कामटा को बार बार करबा को चेष्टा करबनी आउ आपण तो जदि ताको भयभीत करबे तबे से आउ काहार सहारा नबो एही समय रे जदि आपण मानक पाखरे से रहइबो आपण ताको भल भाबरे बुझाइबे देखिबे से माने धीरे धीरे निजर मन कथा बुझिबे एवं आपण को कोनोसी कथा लुचेइबा को मध्य चेष्टा करि परियनी तो फ्रेंड्स आपण भी आपण बहुमूल्य मतामत मो सहित शेयर करंतु लेखंतु एपे मार्सी गोटे स्पेस दियंतु कौन लिखा चाहूँ लिखिक तक पठ दिं 9495963210 को मत आपण ह्वाट्सअप बंद करेंगे आम ह्वाट्सअप नंबर टी हूँ 8895254200 क्वेश्चन टी आउ थे कही रखुच्छी पिला समय देवा पेरेन्ट्स मानक जरूरी स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार सुनीता, केमिती अछ? आउ आजी एठी केमिती?
1: नमस्कार दीदी, आजी मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।
3: वेलकम बैक ट्यून को चिन्ह म्यूजिक लियो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक देर से ले तक रे रेडियो हम सबर सागर अछि आपन को सहित सो चलची आज चर्चा रे। आ आज चर्चा रे आपन मन पई उटे ब्यूटीफुल टॉपिक मु रखितली कि पिला मन पई समय देबा पेरेंट्स मन पई केते जरूरी। मो पाखे परवर्ती मेसेज टी आसी पहुंच जाइछि। मेसेज टी करिसेंति संतोष बेहरा कंटिलो आठगोडरु। से लिखिसेंति जय श्री राधे राधे सागर भाई, शुभ अपराह्न। टॉपिक विषय लिखिसेंति कि ए व्यस्त बहुल जीवन रे पिलांको समय देबा उचित। पिलांको सहित मिसिबा, भलमंद बुझिबा, हसखुशी हेबा दरकार। एबे भी आम पिला माने बाहर अछन्ति किंतु सकाळे ओ संध्यारे फोन जोगे कथा हे जाउछु। बहुत बढ़िया कथा लिखिछन्ति संतोष बेहरा कंटिलो आठगोटरो। तो फ्रेंड्स, पिला मानंकु समय देबार अर्थ केवल दामी खेलना किणिदेबा नुहे। सतकथा कहिबा गले सेमानंक सह बसिबा, कथा हेबा, गप शुणिबा, सेमानंक सह हसी

0: पर भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय

0: नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक

0: नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इतरजन कार्यक्रम सुनतले आकाशवाणी दिल्ली रो ट्यून करचे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकाटक दिल से तेल तक अमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परबे विज्ञापन विरती पारे।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायरक समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही कि जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे।

0: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर को समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही कि जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ई जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।
1: आगामी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर समय रे नूतन भोटर तालिकारे नाम सुनिश्चित करिबा पई आज ही निजर एवं निज परिवार सदस्यक नाम मैपिंग करै रखंतु। एही मैपिंग प्रक्रिया पई कोनोसी प्रकार दस्तावेज किंबा प्रमाणपत्र देबार आवश्यकता नाही। केवल voters.aci.gov.in किंबा ceoodisha.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध 2002 भोटर तालिकारे निजर ओ परिवार सदस्यक विवरणी चिन्हट करी निजर बीएलओ को प्रदान करंतु। जदि निज नाम 2002 भोटर तालिकारे न थाए तेबे सही भोटर तालिकारे थिबा निज पिता किंबा मातांक नाम चिन्हट करि निजर बीएलओ को दियंतु। जदि पिता मातांक तथ्य 2002 भोटर तालिकारे उपलब्ध नाही तेबे जेजेबापा किंबा जेजेमांक विवरणी 2002 भोटर तालिकारु खोजि निजर बीएलओ को देई मैपिंग कराइ परिबे। अधिक सूचना पई भोटर हेल्पलाइन 1950 को जोगाजोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिए जाइछि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिए जाइछि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायर को समस्या कम हो जीव तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते

वेलकम बैक टून क्वेश्चन इमेज के लिए 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक देत से दिल तक रेडियो एम सुपर सागर छ आपन को सहित सो चलची मोदेश फ्रेंड्स 1866 मसिया मे न अर्थात आज रे दिन रे महाराष्ट्र एक साधारण परिवार रे गोपाल कृष्ण को क्ले जन्म ग्रहण करथिले परिवार रो आर्थिक अवस्था शक्तिशाली नथिला सत किंतु शिक्षा प्रति तांको आग्रह बहुत थिला गोखले विश्वास करथिले जे देशर उन्नति पई शिक्षा होची सबटरो बड़ स्तर से संजम शांति ओ आलोचना माध्यम रे देशर समस्यार समाधान चाहथिले शिक्षार प्रसार ओ समाज संस्कार पई सारा जीवन पई से निज जीवन को उत्सर्गीकृत करथिले

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: वेलकम बैक ट्यून कुचिन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन को सहित सो चलची मो देश आ मो देश रे आज हमें कथा होचे गोपाल कृष्ण गोखले को संपर्क रे। फ्रेंड्स, गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापन करथिले। এই সংগঠনর উদ্দেশ্য লা দেশ সেবা পাই যুবক মানুষ প্রস্তুত করা। সে মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক গুরু ভাবে পরিচিত লে। গোখলে সরলতা, সত্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেম গান্ধীজী খুব প্রভাবিত করে। ফ্রেন্ডস, স্বাধীনতা কিছু মহান ব্যক্তিত্ব জ্ঞান আদর্শ ও সমাজ সেবা দ্বারা দেশের জাগরণ সৃষ্টি করে। আপনার গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অন্যতম

नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ट्यून करी छंदे 100.4 आकाश बाणी एफएम रिंग बोकाटक दिल से दिल तक। सो सैटरडे रही कोजी कोजी इवनिंग को माने आफ्टरनून को आपण समस्तंको स्वागत करू छी। मु आपणकर म्युझिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी। सुभी सहित अच्छी ढेर सारा आपणकर गपसप मस्ती आउ सैटरडे को एंजॉय करिबार तड़का एंड वड़का। वीकेंड आसी जाए माने सैटरडे पहुंची जाए सेतबेले मन हे जाए हल्का रिलैक्सिंग आउ मन झुमी उठे नाची उठे गोटे मस्ती भरा मूड आसी पहुंची जाए थाए कहीं ना होल वीक रो ए हसल वसल भरा लाइफ को एंजॉय करिबा पाए मात्र सप्ताह को मिली थाए दी दिन माने सैटरडे आउ संडे। सैटरडे को आहुरी एंटरटेनिंग फन लोडेड करिबा पई ही सुभी जोड़ी गई छे आपणक सहित ओनली एंड ओनली ऑन आपणकर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। आउ सबु दिन अपराह्न 4 बाजिबा मात्रे आपणकर अपराह्न को सुरीला बनेबा पई ही आमे माने जोड़ी ही जाऊ आपणक सहित ऑन द शो सुरीला आफ्टरनून। सो ए सुरीला आफ्टरनून रो स्टार्टिंग बिगिनिंग सबु बेले म्यूजिक रो हवाई तो बनता है तो आपनको पाखरे पहुंचे दो छी कि जे खास ब्यूटीफुल ट्रैक देन आपनको सहित कथा भी मीठा मीठा। सो क्वाड भी चिबेनी क्वाड भी स्विच करिबेनी तो दिल थाम के बैठे रहिए हमारे साथ माने आपके फेवरेट एफएम स्टेशन के साथ बोलते रहिए दिल से दिल तक।

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। चलिसी सुरिला आफ्टरनून र बनवानी सुनिशन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। फ्रेंड्स ए साइलेंस रवि अलगा अलगा टाइप थाए गोटे साइलेंस थाए पीस रे माने शांति रे आ गोटे साइलेंस जेते बेले आमे रागी जाऊ सेते बेले आमे साइलेंट हे जाऊ। सो फ्रेंड्स जेते बेले के ही आमे नियरर एंड डियरर रागी की साइलेंट हे जांती से साइलेंस टा बहुत ही कष्ट देई थाए किंतु कितेक सिचुएशन रे ए साइलेंट रही जिबाटा ही सबुटु स्मार्टेस्ट रिएक्शन हे थाए। सबु जगरे पलट जवाब दबा कि आर्ग्यू करिबा ठीक हे न थाए। सो फ्रेंड्स जेते बेले लोक माने मैच्योर हे जांती सेते बेले ए डिफरेंस आम माने बहुत भल भाबरे बुझी जाई थाउ। सो फ्रेंड्स ए साइलेंस रो पावर बहुत ही रहे थाए आम लाइफ रे बेले बेले जिमति कहा जाए कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर किछि जिनस रे बस किछि न करी दिल थाम के बैठ जाए और बस ऐसे ही चुपचाप रह के हमें सुनते रहिए और आपको खुश बनाते रहिए अपने आप में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए बेझिझक मुस्कुराते रहिए एंड ट्यून करते रहिए ओनली एंड ओनली योर फेवरेट एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का दिल से दिल तक।

सो फ्रेंड्स एंती म्यूजिक र मस्ती सहित ढेर सारा गप सब आपनक सहित चली थिबो ऑन द शो सुरीला आफ्टरनून फ्रेंड्स आमो डेली लाइफ रे ई सब कन्वर्सेशन सहित टिके साइलेंस भी दरकार सकाळ र फ्रेश एनवायरनमेंट हो बा चढ़े मानकर किचिर मिचिर साउंड हो कि बरसा र जो साउंड ए सबो साउंड ना आम माइंड को बहुत ही काम आउ रिलैक्स करी थाए जिमती कि ए सबो रो साउंड आमी जित बेले साइलेंट ही टिके गौर से ए सबो सुनी थाओ सेते बेले ए सबो आमको गुटे साउंड थेरापी भलिया काम करी थाए सबो बेले नॉइज आउ स्ट्रेस भितरे रहिले ब्रेन टिके टायर्ड फील करे से सेति पई केबे केबे मी टाइम बा एलोन टाइम रखिबा भलो म्यूजिक ऑफ करी निजरो फोन

साइडरे रखी बस केवल काम आउ साइलेंट ही बसी रहबे एमते किछ साइलेंट मोमेंट लाइफ रे रहिले एटा हमकु हम निज सहित कनेक्ट हबा को गोटे भलो सुजोग दे थाय।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जायटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जायटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक वह सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedback amc1।

feedback@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. एंग्जाइटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों, बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना, बार बार चीजों को सही करते रहना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचने कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत लगाव होना, जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना आदि। दोस्तों, इस एंग्जाइटी के कई प्रकार है, जैसे सामान्य एंग्जाइटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जाइटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते, तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है, उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है, जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है, इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब ये पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो ये एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है, घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं। वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है, वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है।
व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और

पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंजाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंजाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंजाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंजाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लम्हे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान अपराह 5:26। आरंभ करवा अपने घर एवं मोर गपशप रसो डायल इन लाइव चिट चैट। केंद्रीय प्रश्न रहिब मोर आउ आपण कहिबे आपणकर मीठा मीठा मतामत कॉल जोगे। सो आज आपण आम सहित शेयर करंतु एमती गोटे स्थान बा एमती गोटे प्लेस जोटा आपणको बहुत ही शांति देथाय। सो फ्रेंड्स, लाइफ रे एमती किछि जागा थाय जेमती आम घर घरे आमे निजर कोनसी के हमको जज करबा को न थांती, आमे सब बेले निजर ओन सेल्फ हेकि थाउ। आउ किछि एमिति जागा थाय जोंठे कि आमे बुलिबा को जाई थाउ बा केबे थरे अधे सिठी बुली आसी थाउ, हेले भी से जागा आम माइंड रे सब दिन पई रही जाई थाय। काहेकि ना सही प्लेस आमको बहुत ही काम फील करै थाय, आमको बहुत ही मानसिक शांति दे थाय। सो फ्रेंड्स, एमती किछि प्लेस जदि आपणकर रहिछि शेयर करंतु आम सहित, डायल करंतु नंबर 0671-230-3153। आउ थरे कहि रखुछि नंबर टी 0671-230-3153।

0: नमस्कार।
1: गुल्लु पटनायक खसीपुरा आनंदपुर केन्द्रीय रु कहली।
0: बुलु भाई आपण को हम कार्यक्रम को स्वागत। कौन कहबे आज रो विषय रे?
1: आया
0: मुली कौन कहबे आज रो टॉपिक विषय रे?
1: मैडम आज रो टॉपिक टा कौन अछि टिके कहिले कि
0: आज हमरो रहिछि जे माने कोनो से गोटे स्थान जेउटा कि आपण को माइंड को बहुत शांति देथाय, बहुत काम आ रिलैक्सिंग आपण को फील करे थाय, से विषय रे किछि थॉट शेयर करंतु।
1: मोर दुटि स्थान
0: मो
1: जीवन स्मृति होकर रही दुईट स्थान को मुझे फकीर मोहन सेनापति गोटे उपन्यास छण आठ गुंठ से जगह उपरको मुझे छ मण आठ गुंठ जगह उपरको जोटा कि मोर गोटे स्मृति रटना आ गोटे हूँ मुकुंद देव एवं कलापहाड़ मध्य जाजपुर भद्रक जिला सीमार भद्रक जिलार गोहिरा टिकी ठारे युद्ध होता से युद्ध क्षेत्र में मुकुंद देव परास्त हो निहत होते से युद्ध क्षेत्र भूमि को मुझे तेणु से छण आठ गुंठ एवं युद्ध क्षेत्र भूमि स्पर्श कर घटना मो जीवन स्मृति होकर रही।
0: जाहो एते सुंदर कथा शेयर करले, ए सब माने आम पई गर्व, ए सब स्थान को जिबा मध्य निहाती दरकार। आमे से सब जगह को गले ही आम ओडिसा रो जो ऐतिह्य रहिछि, जो इतिहास रहिछि ताको बंची पारिबा, माने जेमती लागिबो के आमे समय रे पूर्णी से पछ को फेरी जाय के ए सब को बंची पारिबा। बहुत सुंदर कथा शेयर करले आम सहित, सेति पई बुलु भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इतने बुलु भाई आम रेगुलर लिस्नर आम सहित थॉट शेयर कले। सतरे एमती किसी ऐतिहासिक स्थान मध्य आम जीवा आवश्यक, जोठी आम आम पूर्व पीढ़ी आम आम आनसेस्टर मान को जापर से वीरत्वर गाथा को मध्य जापर। सो कौन रही आपणकर थॉट आउ बहुत ही कम समय रही आप सहित कथा, तेणु जल्दी जल्दी शेयर कर दिंतु आम सहित। डायल करंतु नंबर 0671230315।

0: So, everyone, tune in to 100.4 Akashvani FM Rainbow, Katak Dil Se Dil Tak. So, let's go, dial in live chit chat and kotha hutli emti kichi jaga ama life re thai, emti kichi place thai, seithi jothi ki ame bohuti shanti anubhav karithau. Bele bele na kehi kehi manisa amara happy place paloti janti. So, aau kebe kotha bhi apananko sahita emti kichi manisa je amaku बहुत किछि खुशी हैप्पी फील करै थांती आमे जहां भी असुविधा हेता आमे तांको सहित शेयर करि देले खुशी जो बस तांकर प्रेजेंस ही हमको खुशी आनी दिए सो एमते किछि कथा आगु को मध्य आपनको सहित जारी रहबो आहरी बहुत किछि चिटचैट बहुत किछि शो बहुत किछि म्यूजिकल मस्ती मध्य आपनको सहित जारी रहबो सो सेति पई कुआडी भी स्विच करिवेनि केवल ट्यून करथिबे आपनकर फेवरेट एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टे tuned.
1: Dasababu, apnako ghorota 1970 re tiyari.

दूरदर्शन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान संध्या 6:05 वर्तमान सुनंतु आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 12तम अध्याय सुनी पारिबे संध्या 6:10 रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना सुनिबे 6:30 रे संध्या आसर सुनिबे संध्या 7:25 रे राति 8:02 रे कार्यक्रम गीतरे भितरे अभुला स्मृति सुनी पारिबे राति 9:15 रे राति 10:00 रे निज मनपसंद गीत एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया रे रिक्वेस्ट करी सुनी पारिबे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस रे आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना वर्तमान सुनंतु आसंता काली अर्थात मे मास 10 रविवार दिन प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाली सुनबे सकाळ 6:05 रे अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 31तम भाग सुनबे सकाळ 6:40 रे आमर स्वास्थ्य सकाळ 7:10 रे एथिरे विषय रहिछि अंशुघात पई प्राकृतिक चिकित्सा आलोचना करिबे डाक्टर मदन मोहन पाढ़ी शुभ सकाळ सुनिबे सकाळ 7:25 रे मॉर्निंग मेलोडी सकाळ 8:30 रे सकाळ 9 रे कार्यक्रम डायल इन लाइव चिटचाट एथिरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल माध्यमरे निजर मतामत रखी पारिबे रेनबो एसएमएस सुनिबे सकाळ 10 रे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रु दिन 11 रे किछि कथा किछि गीत सुनिबे दिन 12 रे एथिरे हिंदी एवं ओडिया चलचित्र रो गीत सुनि पारिबे आज चर्चा रे दिन 1:10 रे एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मत रखी पारिबे व्हाट्सएप एवं एसएमएस माध्यमरे पुरुणा उड़िया कथाचित्र गीत सुनिपारिबे दिन 2:45 रे अपराह्न 3 कार्यक्रम मो देश सुरिला आफ्टरनून सुनिपारिबे अपराह्न 4 रे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिपारिबे अपराह्न 4:50 रे डायल इन लाइव चिटचाट अपराह्न 5:02 रे एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मत फोन कॉल माध्यम रे शेयर करि

0: ट्यून कर चंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी बाजिबा को जाउछि समय संध्या 6टा बजी 10 मिनट प्रचार करुछु गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् श्री रामचरित मानसर 12तम भाग एवं परिपरि संस्कृत रे संवाद रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: एपिसोड नंबर 12।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम् तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम् विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबैको देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान् अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति अथ वार्ताः विशदीकृत्य शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान् इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम् अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत् कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रवि श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान् तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18+ विधायकाः आवश्यकाः आसन् चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम् अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम् यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति येन दलस्य संख्या 70+ भविष्यति तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं

यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीप तटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्नाटक तटेषु मत्स्य ग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं सार्ध सप्तवादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।

0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଜିନେସ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିର 4ଟି ଦର ଲାଗୁଛି। 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦରଯୁକ୍ତ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ 0% ଜିଏସ୍ଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି 1000 ଟଙ୍କାରୁ 2499 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ 12% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ 2500 ରୁ 7499 ଟଙ୍କାର ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ର ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ କେବଳ 2ଟି ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 7500 ରୁ କମ୍ ଦାମ୍ର ରୁମ୍ ହେଲେ 5%, ଆଉ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଥିଲେ 12% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा

0: प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
2: जीएसटी काउंसिल निजर 56वीं बैठक रे हेल्थ केयर द्रव्य को सस्ता करिबा द्वारा आम देशर
3: मुख्य संवाद सहित मुनिना साहू। राज्यरे जनसाधारणको उपयुक्त न्याय प्रदान एवं साइबर अपराधर त्वरित विचार पई 7टी महिला फास्ट ट्रक एवं 5टी साइबर कोर्ट प्रतिष्ठा हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिजंती। पूरी श्रीमंदिर रत्न भंडारे रत्न अलंकार गणति मणति कार्य सोमवार आरंभ हो दुई दिन धरी एक गणति मणति हो श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉ रविंद्र पाढ़ी महाप्रभु बाहर चंदन यात्रापाई कार्य स्थगित रखा। काजु प्रक्रियाकरण शिल्प नुआ जंत्र और प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार कृषकंकु आर्थिक दिगरे सशक्त करिबा बोली मत्स्य प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिछन्ती। गंजाम जिला गोपालपुर जिला काजु प्रक्रियाकरण शिल्प संघ पक्षर् आयोजित काजु शिल्प सम्बन्धीय जंत्र प्रदर्शनी रे जोगदेइ मंत्री एहा कहिछन्ती। ओडिशा उपकूल अब्दुल कलाम द्वीपर् प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन डीआरडीओ अत्याधुनिक अग्नि क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण कर आज बाहर चंदन यात्रार शेष दिवस नरेन्द्र पुष्करणी रात्र चापरे 21 घेरा जल क्रीड़ा सह भौरी विधि अनुष्ठित होउछि। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणा आसंता सोमवार दिन बंद रुवनेश्वर में शुणा कार्य को बंद रखा साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर् दक्षिण आंडामान सगर में सृष्ट घूर्णवलय सोमवार सुधा लघुचाप क्षेत्र में परिणत होवार संभावना रही प्रभाव में राज्य वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब बोली भुवनेश्वरस्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष कहुआई। मुख्य संवाद शेष होला परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे राति 8। नमस्कार।

0: अरे कविता, भल लगिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसीछ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपण को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल UWIN रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सो चली छी संध्या सर एंड मो अछि आपनकर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी आपनक सहित। सो फ्रेंड्स, जदि अछि आज आपनकर कोन सीनियर एंड डियरनकर बर्थडे या फिर चाहु छंदे आपनकर दिल की थॉट को शेयर करबा पई, ताले शेयर कर दियंतु एसएमएस किंबा व्हाट्सअप जरिया रे। सो आमर व्हाट्सअप नंबर टी हूँ 8895254200। सो आउ थरे कहि रखुछि, आपण चाहिले व्हाट्सअप जरिया रे आमको मेसेज करी जदि काको बर्थडे विश करबा को चाहौछन्ती बा किछि विश करबा को चाहौछन्ती, आपणक हृदय थॉट शेयर करबा को चाहौछन्ती, ताहले आमको व्हाट्सअप करि परिबे। आमर ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर टी हूँ 8895254200। सो आउ गोटे बहुत ही खास म्यूजिकल ट्रैक सोनू निगम का आवाज रे पहुंची दो छे आपन को पाखरे। सो स्टे ट्यून्ड।

0: टाटा स्टील प्लांट टाटा स्टील परिवार तरफरु प्यार भरा नमस्कार। सो प्रथमे तो अभियोग करिछन्ती कि अपा आपण आम सॉन्ग मते सुणै नहांती आज राति 10 PM ले आमे अच्छा तो निहाती आपणकर SMS जेती जल्दी आसी पहुँचिबो सेती जल्दी आपणकर गीत मु दबाकु निहाती भाबरे ट्राई करबी। केबे भाबिबेनी कि केही आपणकर गीत दबाकु चाहू नहांती आपण आमर प्रिय श्रोता। सो आपणक गीत पई ही आपणकर हृदयर गीत आपणक जांके पहुँचिबा पई ही आमे अछु। बस कोनोसी समयर पाबंदी हो बा आपणक गीतर अनअवेलेबिलिटी सो सेही दृष्टि रु ही आमे आपणकर गीत अनफॉर्चुनेट किंतु किसी न था कि आम आप गीत देवना तो सो लेट्स सी आज जदि आपे लकी सो आपण गीत पहुंची सो से नेक्स्ट लिखी कि दुनिया पाई पदे जोटा कि मम्मी पापा अच्छी। अगर जिंदगी में कुछ मांगना है तो अपनी माँ बाप की लंबी उम्र मांगो क्योंकि इनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। सो आम पेरेंट्स मानक एत सेल्फलेस भल पाइबा आमको कहीं भी देवे बहुत ही बढ़िया थिला कथाटी। सो लिखी कि अपा आपण को मध्य वेरी गुड इवनिंग आज्ञा। सो आपण आम प्लांट को केबे बुलिबा को आसंतु आम तो ननोडिया आपण प्रोग्राम बहुत भल लगुच आपण कथाशैली वॉइस आमको बहुत भल लगुच। थैंक यू सो मच जदि के सुजोग मिले ताहले निहाती जिबा को ट्राए करी कि आपण मैंने आम सहित कनेक्ट होता ही सब बड़ कथा। एवं लिखी कि सब स्टाफ मानू से जन गुड इवनिंग जमती कि अनु अपा स्मृति अपा नारायण भाई एवं सुदीपा अपा को वेरी गुड इवनिंग जनई। सो समस्त पाखे आज शो जरिया निहाती भाव गुड इवनिंग पहुंची जाइए लिखी कलिग जमी रोहित सेन दीपक कुमार अशोक कुमार अलीसा अप्पा तमन्ना रेड्डी एवं अमित सेन मनीष शर्मा को मध्यम वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो समस्त पाखे पहुंची जाइथिबा आपनकर वेरी गुड इवनिंग रही स्वीट SMS टी। सो एमती ही आम सहित जोड़ी ही रही था ओनली ऑन 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: अरे कविता, भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मु झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल UWIN रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी गीतरे मीतरे मजी आपणकर रेनबो होस्ट एंड दोस्त सुभी आपणक सदांड कहिथांती कि आम बॉडी रे ई जो ब्लड रो डेफिशिएंसी गोटे बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम गोटे बहुत ही बड़ इश्यू जितेबेले आम ब्लड आम होल बॉडी ए ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ही कंट्रोल हेथाय सेतेबेले ए ब्लड सेते प्योर रहबा बहुत ही इंपोर्टेंट हेथाय एमती किसी सुपर फुड्स अच्छी जो गुड़ाक आम डेली डाइट रे इनक्लूड कले आम ब्लड प्योर रही पार आम गोटे हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन करी पारिबा सबुठ प्रथम माइंड को आसे आम समस्त प्रिय पालंग साग बा स्पिनच

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।

0: सरकार बनाने का दावा पेश किया, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था।

0: सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay.

दिल तक। स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान राति 9:38 आप सहित मुझे आप म्यूजिकल होस्ट एंड दो सुवी विद द शो अभुला स्मृति। सो फ्रेंड्स जितेबले ई अभुला स्मृति रे किछ म्यूजिक रा कथा आसे सेतबले गोटे सुदिंग सा वॉइस आम समस्त माइंड रे घुरी बुले जहार वॉइस आमको सबले पूरा काम एंड रिलैक्स कर दे थाए। सो फ्रेंड्स ये होचंदि लेजेंडरी सिंगर हरिहरन। आजिल अभुला स्मृति रे सेमती किछि नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल ट्रैक्स आपनको पाखरे पहुचेबी हरिहरन का आवाज रे। सो डेरी करबाने स्टार्ट करबा सो अभुला स्मृति विद दिस म्यूजिक। स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

टुनगर्शन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली छी अभुला स्मृति अंदाजी अभुला स्मृति रे आपनंग पाकरे पहुंचो छी हरिहरन का आवाज रे किछि ब्यूटीफुल सा ट्रैक एंड नेक्स्ट ट्रैक टी रही छी मूवी सपनेरु सो एक दड़ी को गाई छथि हरिहरन का सहित साधना सरगम आई होप यू विल बी लाइक इट सो स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

टनकुलशन दे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी अवला स्मृति मो छी आपनका म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी आपनका सहित फ्रेंड्स हरिहरन केवल जे सिनेमा रे गाइछंती से अनुहे बरंग से विभिन्न लैंग्वेज रे मध्य डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज रे मध्य गाइछंती जहा तांको गोटे बहुत ही वर्सटाइल सिंगर भावरे बॉलीवुड इंडस्ट्री रे ना दीछी एनी हरिहरन कर स्वीट स्विदिंग वॉइस रे गीत गुडीक आमको निहाते भावरे मन को छुई थाए सो फ्रेंड्स हरिहरन का आवाज रे आउ किछि ब्यूटीफुल ट्रैक्स पहुंचोछि आपनका पाखरे ऑन द शो अवला स्मृति सो स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक एंड कोथांतु दिल से दिल तक

स्टेशन 100.4 एकस बनी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी अवला स्मृति मु अछि आपनका म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी आपनका सहित फ्रेंड्स ए आर रहमान।

ट्यून करछेन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली छी अवला स्मृति एंड मो अछि आपनक म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभि आपनक सहित हरिहरन का आवाज र जादू विभिन्न अभिनेता को सहित काम करिवार सौभाग्य तांगु मिले छी एवं ई हरिहरन का जादू विभिन्न एक्टर को ऊपर मध्य चली छी। सो हरिहरन केवल क्लासिकल बा ई बॉलीवुड म्यूजिक नुहे बरं फॉरेन रे विभिन्न बाहर भाषार भाषार मध्य विभिन्न गीत गाइछंती एवं एहा तांगु इंटरनेशनल स्तर रे बहुत सुनाम आनदेछी।

Musically yours, 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छि रेनबो SMS एंड मो छि अपन का म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सो भी अपन का सहित एंड अपन का ढेर सारा SMS और रिक्वेस्ट ऐसे पहुंचे लेनी मो पाखरे तो जिते एज पॉसिबल मो अपन माने का रिक्वेस्ट को प्ले करबा पई ट्राई करू छि बट समय रे पाबंदी एंड अवेलेबिलिटी सो दीटा को देखी कि नहीं मो ट्राई करबी केतेटा मेसेज केतेटा गीत मो अपन का दे परु छि सो लेट करिबनी देखना बा के करिसेंती हमको नेक्स्ट मेसेज टी तो हम से तो जुड़ी ही छंती अनिल गौरव मानसी कविता अरोरा सुभाष मार्ग न्यू दिल्ली मोती नगर रु एवं सुनबा को चाहि छंती दीवाना मस्ताना मूवी रो गोटे गीत एवं ता पर रिक्वेस्ट आसी छि हजरी लेन कटक रु आज आकाशे किरंग लगला गीत शुणा को चाहती रश्मि रंजन दास सहित आम सहित जोड़ी विषयी मयूरभंजरु सुकांत माझी शुणा को चाहती गुरु कथाचित्रु लिजेंडरी सॉन्ग तेरे बिना गीत सो ये तीनोटी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक आपण पहुंचे दौर बैक टू बैक सो स्टे ट्यून टू ओनली एंड ओनली योर फेवरेट म्यूजिकल FM स्टेशन 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो काटा कौन था दिल से दिल तक।

0: সময় সরে যাইছি এটি হি ইন করছু সো রেইনবো এস এম এস যেমানে আজ রেইনবো এস এম এস রে মেসেজ করেছিল সমস্ত দিল সে ধন্যবাদ এবং যেমানে আমাকে শুনছেন্তি সমস্ত হার্টলি থ্যাংক ইউ সে টিউন 200.4 আকাশবাণী এফ এম রেইনবো কটক দিল সে দিল তাক আজ অধিবেশন শেষ করা পূর্ব হিন্দি সম্বাদ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রু
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख

0: सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कटक
3: राती 11:05 मुख्य संवाद सह महेन्द्र कुमार माझी। प्रधानमंत्री आसंताकाली कर्णाटक तेलंगाना गस्तरे जाई विभिन्न प्रकल्पर करिबे उद्घाटन। सामाजिक सुरक्षा प्रदान लक्ष्य कार्यकारी होउथिबा जनसुरक्षा योजनार 11 वर्ष पूर्ति। ओडिशार 5 पंचायत समेत देशर 42 पंचायत को मिलिब जातीय पंचायत पुरस्कार। आईपीएल क्रिकेट रे आज गुजरात टाइटन्स निर्धारित 20 ओवर रे 4 विकेट हरई 229 रन संग्रह करथिबा बेले राजस्थान रॉयल्स खबर प्रस्तुत हेबा बेलकु 16 ओवर रे 8 विकेट हरई 151 रन संग्रह करिछि। सठिक न्याय प्रदान पई राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो 7 महिला फास्ट ट्रैक ओ 5 साइबर कोर्ट। राज्यर समस्त जिल्ला रे द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित। ओडिशा उपकूलर अत्याधुनिक अग्नि क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। चंदन यात्रार शेष दिवस में पूरी नरेन्द्र पुष्करिणी में जलक्रीड़ा सह अनुष्ठित होउछि भौरी नीति। आसंता सोमवार और मंगलवार 2 दिन धरी रत्नभंडार अलंकार गणतिमणति कार्य संपन्न होबा नै मंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना। ग्रीष्म छुट्टी शिक्षार्थी शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत कले सरकार एणिकी व्हाट्सएप माध्यम छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण करिबे एवं घूर्णीबल प्रभाव में वज्रपात सह वर्षा नहीं प्राय समस्त जिला सतर्क सूचना जारी कला पाणिपाग विभाग।

सुनिशिया आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:05 आरंभ करुछु भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्घ्यथाळी।

सकाळरे आपणमाने शुणिछंती आपणक साथी स्मृतिको तबे राजराजुडा समयरे राजामाने काठ संग्रह करी महानदीरे भेळा करी पठेई दउथिले काठ सबु जहा भार्गवी नदीर मालती पाटपुररे पहुँचुथिला एवं परे सगड़ गाड़ी काठ पूरी जाई रथखळारे पहुँची जाउथिला तबे राजतंत्र लोप पाइबा परे सरकारंक द्वारा नयागढ़ जिल्लारो आसुथिबा फासी असन धौरा एसबु काठकु डीएफओंक माध्यमरे पठा जाउछि वर्तमान काठ पठाजिबा पूर्वरु गछ निकटरे विधि अनुजाई पूजा होम मध्य करा जाउछि एहा परे सरकारी खर्चरे ट्रकरे काठ सबु पूरी अणा जाउछि तेबे जिबा समयरे रास्तारे अनेक गुड़िए भक्त एही रथ काठकु अर्चना करिथांदि एही रथ काठकु फूलमाळ नालिकना सबु बंधा जाइथाय घंट वादन करा जाय एवं ता परे पूरी अभिमुखे बाहरी थाय ए पवित्र रथकाठ

ट्यून करिछन्दि आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाळ 6:40 आरंभ करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवत। आज शुणन्तु एहार 29 भाग। प्रयोजना सुहास।

0: हे फ्रेंड्स ट्यून करिछंदी आकाश पाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग रे भी आपण माने आम सह कनेक्टेड अछंदी वर्तमान समय सकाळ 7:00 ऑलरेडी हे गलेनी एंड आपणक साथी स्मृति को आज रा सकाळ रे आपण माने सुन
1: आज होची मे मासर 8 तारीख सारा विश्व रे या को रेडक्रॉस दिवस रूपे पालन करा जाउची तेबे ए रेडक्रॉस विषय रे आसंतु किछि जानिबा दैव दुर्विपाक समय रे मनुष्य जेतेबेले ढहळ बिकळ हेउथाय सही समय रे पहुंच जाए गोटे गाड़ी जेउतरे नाली रंगर गोटे छक्क चिन्ह थाए एही रेडक्रॉस गाड़ी निराश हृदय रे केते जे आशा भरी जे ता अनुभव ही जानि परिबो तेबे काहे कि एमिति हुए कोन एही रेडक्रॉस रेडक्रॉस हेउची एक आंतरजातिक संस्था सेवा जार एकमात्र मूलमंत्र विश्वर कोटी हृदय एकाठी हेबा तो असंभव कथा मात्र एहा संभव होई पारिछि एकमात्र व्यक्ति द्वारा जाहाकु आमे रेडक्रॉस रो जनक बोली कहू सेही जोगजन्मा हेउचंती फ्रांस बेसी जेन हेनरी डुनांट तांकर जन्मदिवस हेउची मे 8 तारीख जाहाकु कि आमे रेडक्रॉस दिवस रूपे आज पालन करूछु श्रोता बंधु आमे टिक्के पछुकु जिबा 1859 मसिया जून 24 तारीख फ्रांस ओ अस्ट्रिया मध्ये एक लोमो हर्षणकारी युद्ध होइतिला सल्फेरिनो स्थान रे ताहा हेनरी डुनांट दृष्टिगोचर हला आहत सैनिक मानकर आत्मचित्कार तांको मनरे भावांतर सृष्टि कला सेही आहत सैनिक मानकर सेवा पाई एक निरपेक्ष सेवा दल गठन करबा उद्देश्य रे से विश्वर देश मानको आह्वान कले मानवीकतार आह्वान सफल हला 1863 मसिया अक्टोबर 23 तारिख रे आंतरजातिक रेडक्रॉस समिति गठित हला परवर्ती समय रे जेनेवा कन्वेंशन माध्यम रे विश्वर समस्त राष्ट्र मानकर द्वारा एहा स्वीकृत हला एहा ही रेडक्रॉस रो जन्म कहानी वर्तमान 160 रु ऊर्ध्व राष्ट्र रेडक्रॉस रो सभ्य अटंती आम देश रे 1920 रे भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी

Hey friends, welcome back. Musically yours, Akashvani FM Rainbow Katak ko apan mane tune kari chanti, suno chanti. And jo mane frequency bahare achanti, se mane amoko news on AIR app live streaming re bhi suno chanti. Ajra sakal re apan mane yes connected achanti apanka sathi smriti sahita. And samay vartaman he galadi sakal 7 baje 26 minute. To dosto, har subah nayi roshni naya khwab lati hai. सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। फूलों की तरह आप सब मुस्कुराते रहो, चमकते सूरज की तरह दमकते रहो, और यही है हमेशा स्मृति के तरफ से आप लोगों को शुभ कामना, शुभ सकाल र शुभ कामना, कारण सो आरंभ हो जाई छी शुभ सकाल। तबे चलंतु सकल सकल जेतेबेले आपण माने एफएम रेनबो को सुनी छंती एंड एते कार्यव्यस्तता भितरे मध्ये हम सहित कनेक्टेड रही छंती ताले आमे मध्ये आपण को निराश करेबुनी बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल गीत आसे छि आपण मन का पाख को एन्जॉय करु थांतो एंड आमे सहित एंते रही थांतो चितके के एंड कहु थांतो दिल से दिल तक।

प्यार में जब दिल पड़ता है तो दिन हो सुबह हो शाम हो रात हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमेशा प्यार की जो नैया है उसमें ही तैरते जाते हैं और वक्त का पता नहीं चलता। अभी देखिए ना, वक्त भी हो चला है सुबह 7:40 और आपके साथ आज की सुबह हम जुड़े हैं, आपकी हम सफर होस्ट स्मृति, और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चल रहा है सुबह सकार। तो दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को। अच्छा ठीक है, इमेजिन करंतु कि ये ब्लड पाई वेट करी छी कि ये मेडिसिन पाई स्ट्रगल करू छी और सही समय रे कोटे अननोन पर्सन का हाथ आपण का पट को

सुनी चंदिया का आसपानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छि सुबह सकाळ अंडाज र सकाळ रे आपण माने सुनी चंदिया आपण का साथ ही स्मृति को संगमनी दुनिया रे नेगेटिविटी बहुत अछि किंतु गोटे स्मॉल काइंडनेस पूरा दिन को चेंज कर दे पारे केबे केबे लोक माने मेंटली स्ट्रगल करंती सेती बेले गोटे सिंपल लाइन मो अछि ना टेंशन नहीं लेने का एटा ए जो कथा गोटे बहुत बड़ मेडिसिन भली काम करी थाए सो टुडे गोटे कथा आम भितरे आमे निजे सेटा को संकल्प नेबा लेट्स बिकम मोर ह्यूमन मोर सपोर्टिव एंड मोर केयरिंग बिकॉज़ रिमेम्बर नोबडी बिकम्स पुअर बाय हेल्पिंग अदर्स.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक माय फ्रेंड, ट्यून करी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग रे भी आपण माने हम सह कनेक्टेड छंती एंड आज रे सकाळ रे आपणक साथ ही स्मृति रही छी आपण मानक पाकरे। दोस्तों, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ शुरू हो चुका है हमारा शो जिसका नाम है मॉर्निंग मेलोडी। तो मॉर्निंग को और थोड़ा मेलोडियस करते हैं। अच्छी गोटे ब्यूटिफुल ट्रक आपण मानक एंजॉय करथांतो, ब्यूटिफुल सकाळ रे आपण माने रहिथांतो एफएम रेनबो रे स्मृति सहित।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रत्येक दिन अपेक्षा कर रही था कारण यही सेगमेंट आम सहित डायरेक्ट लाइव जोड़ी हम जी आपृति सहित एफएम रेनबो कटक प्लाटफर्म जोड़ी हे तो जो माने वर्तमान नुआ करके आमको सुनि छंती कहि रखुछु जे वर्तमान आपण माने हम सहित डायल इन लाइव रे डायरेक्ट कथा हि परिबे फोन नंबर टी प्रथमे टिपि रखंतु 0671 2303 153 0671 कटक कोड 2303 153 ए नंबर रे आपण माने कथा हि परिबे कनेक्ट हि परिबे सो आज को विषय रे कथा हवा एमिति बहुत जागा अछि एमिति बहुत शहर रहिछि जो शहर

0: फटाफट कनेक्ट हूँ 0671230315 नंबर से स्मृति रही सहित आज सकाल पचारूमी कौ सहर जो सहर को बार बार बुली जावाई इच्छा होता है से सहर सहित अनेक किसी स्मृति आपंकर जड़ित हो तो आम सहित सेयार करते से सहर मीठा मीठा स्मृति आहर विषय किसी कथा देखिए आज जन कलर आसगले कि अच्छा हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार उर्मिला भौणी
1: आज्ञा भला छंदी
0: मु भला छी तमे केमती अछो
1: आज आपन को प्रोग्राम सुनु छु
0: अरे वाह बढ़िया अच्छा तो सकल सकल व्यस्तता भितरे तो निहाती भाव थी तो आज हमें पचारु छु सी शहर विषय जो शहर को बार बार जीवा पई इच्छा हुए को शहर टी उर्मिला भौणी कर फेवरेट
1: प्रथमे तो आगो कहि बामदेव भाई टिके विश कर दे जे तंकर मैरिज एनिवर्सरी आज
0: अच्छा ओके
1: मो तरफ टिके विश जने देली जसदा भाउजन को बामदेव भाई की ता सहित कहि को शहर कथा कहि बोले मु जगतसिंहपुर कहि जे हमर अछंती सारणा मा अछंती ता सहित जो ये गोरखनाथ अछंती
0: गोरखनाथ अछंती हां
1: माने बहुत भल जगह तापटे सेपटे सियाली अच्छी जो नेहुर बंगला गोटे अच्छी पहाड़ पाखे समुद्र को पहाड़ से लगी पारादीप बंदर अच्छी से पटे लाइन ना गोटे थर आम बाहर जी आम श्रोता भाई चिंतामणि प्रधान सी से कह आसतु आम इतनी रोसे खाई पीबे जी जेहतु दस पंद्रह जन जाऊ संभव मत कहीं भल लगानी तरफ से कही कहे हाउ व्यस्त ना आम रोसे आयोजन करा रखी दिए आउ गोटे थर को सी सब कौन कर जो अच्छा आउ जन भाई अच्छा फोन कर दे गाड़ी के अपेक्षा
0: करपेक्षा
1: करके थंडा अढ़े लिटर थंडा दीटा धरिकी ठिया मान आम को समस्त देखे पीलु मान गोटे देखु गोटे जगह को आम जाऊे आम सेपट एरिया चिन्ह अच्छा गोटे आमरा खुशी
0: लगे
1: मो सांगे भी जो मैंने थे से खुशी कले जहा भाज तुम रेडियो मध्यम कौआडे कौआडे मैंने जड़ित होकर रही थ्रु रे आम से ये कलु जो भावे से पटे जी मोर समस्त भाई मैंने अच्छा मतलब सहयोग हाथ बढ़े से धन्यवाद देवी ता सहित आमर पुरी पूरी गोटे एमती जगह मैंने तुम जो भी जाओ से जगह तुम इच्छा हम थे मुझे जो कपिलास आमर छोट छोट होते हैं दि वर्ष तीन वर्ष लेखा जाते आम जाऊ माकड़ उत्पात बेस आम सार कहले भोगटा यू कि माकड़ जेहतु भोग नौ माकड़ कि क्षति करेन ठाकुर नौ कि क्षति कर देखा बेलू माकड़ सब कौन कल आसिक पहुंचीगले मुझे देखी से नड़िया कदमी कौन कल का जाकिदेली माकड़ कौन कर मो चार बुलूस मो छुआ दिटा मो चार बुलूस माकड़ कौन कर लुगा कानिक भी टेकुच मानने धरसला मान कड़े लुटे
0: देखा महाचलाक
1: बाजी खंड जमी धईली से सबू पलैले मुझे सार कहली कहली माकड़ भोग तो नौला माकड़ पुणी आसिक हाजिरी हेले
0: अच्छा बहुत बढ़िया अनुभूति शेयर कले सतरे बहुत बढ़िया लगला तबे ए जो जगतसिंहपुर कथा कहउचंती पुरी कथा केते थरो सब गल्लेनी माने आज पर्यंत
1: जगतसिंहपुर 6-7 थरो खंडे गल्लेनी पुरी भी से 8-10 थरो खंडे गल्लेनी
0: अच्छा बहुत बढ़िया जाहु एमती बुल्लु थांदे एमती फेवरेट शहर को जाउ थांदे बहुत बढ़िया लगला उर्मिला भौणी आज कॉल करथिवारु बहुत बहुत धन्यवाद
1: आ जगतसिंहपुर आउ सर धन्यवाद देबी चिंतामणि भाई उमेश भाई आ तुना भाई ना जेहतु पाखरे अछन्ती गल्ला माने आबुड पडन
0: बिल्कुल हां बिल्कुल ओके थैंक यू सो मच कॉल करथिवारु सो ये थिले हम सहित उर्मिला भौणी हम सहित कॉल रे कनेक्ट हेले आउ निज शहर विषय से जो फेवरेट शहर जो जगह को से जीवा पे बारंबार चाहते आउ जाई बहुत सुंदर अनुभूति शेयर कले आपण माने भी फटाफट कॉल करंदु निजर सुंदर शहर केवल ओडिसा भितरे नुहे ओडिसा बाहर भी अछि यार बहुत स्टेट रे एमती बहुत शहर सब रही जो शहर को जीवा पे मन कहे इच्छा हुए जीवा पे एंड मने पड़े बहुत से स्मृति सब तो आपण माने भी आम सहित कनेक्ट हूँ फटाफट 0671230315 नंबर रे स्मृति सहित कनेक्ट हूँ एंड कहतु निजर से मीठा मीठा स्मृति देखिए आज जन कलर आसगले कि अच्छा हेलो
2: हेलो गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग कहतु मधु वेलकम करछु एफएम रेनबो को तबे मधु

0: सुनी जाती है आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छे डायल इन लाइव स्मृति सहित लाइव कथा हो छथि आपण माने स्मृति आज आपण मान को पचारु छि जे एमिति को शहर रही छि जो शहर को बार बार जीवा पई आपण इच्छा करंती जाई छंती बहुत गुडे अभुला स्मृति रही छि सेई शहर रिलेटेड केवल ओडिसा भीतर नहि ओडिसा बाहर मध्य रही थाई पारे त आपण माने हम सहित शेयर करंतु आपणकर मीठा मीठा सेई शहर रा स्मृति सब देखिबा आज जने कॉलर आसीगले कि अछंती हेलो
1: जय जगन्नाथ
0: नमस्कार रश्मि भाई
1: रश्मि रंजन सर त्रिनाथ बाजार पर लग रहा
0: अच्छा केमती लागी वाला फोन डा मझिरे
1: फोन लागी वो मुत्ते बाडा मास पे फोन लग लागो ने फोन आज शुभ शुक्रवार
0: हां आज शुक्रवार राइट
1: हम माने मास रो प्रथम एपिसोड करू जन सर
0: ओके अच्छा रश्मि भाई केमती अछंती
1: ए मु सबर पे बोबाल म
0: एमती बोबाल थांतु बिंदास थांतु सब बोले
1: आज गोटा हूँ स्पेशल दिन मान मान आपर पड़सा घर भाई बामदेव भाई और जशोदा भाई आज मान तीसतम आनिवर्सरी आपर पाखे घर ना
0: बिलकुल बिलकुल कर दिखा
1: हाँ बामदेव भाई जशोदा भाई जो प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु आम गाँ जनार्दन बहुत भल तीस वर्ष मान तीस तम आनिवर्सरी
0: अच्छा
1: बामदेव भाई हूँ मान आम जिते आज समस्ते जिते लिस्नर समस्ते भल कि बामदेव भाई हूँ धीर स्थिर मान रागे मुझे रागि रही गोटे गोटे बामदेव भाई चिंताधारा टा टे उन्नत आ बामदेव भाई हिसाब किताब पूरा टेक्निक बामदेव भाई से जशोदा भाई हिसाब आहुरी मानने कंप्यूटर ब्रेन
0: अच्छा मान ये पुंखानुपुंख भाव में डिटेल्स जानते सब
1: आम पुणा लिस्नर जिते अच्छु सब बल मन रखे ओल्ड इज गोल्ड सब बल पुणा पिला सब समस्त नुआ भी भल सब पुणा पिला हम भल किए आम भितर किए आज फोन कला का फोन कला किए शहे टाकर गीत बाजिला दस आम कम्प्लेन ना आम कौन कथा हलु कौ आज कौन आम जानू कौ आज भल कौ आज खराब किए के प्रोग्राम करेंगे नाइंटी मुझे नाइंटी फाइव रु आकाशवाणी नाइंटी फाइव रु
0: तेरे रश्मि भाई आज तो बहुत पुराना लिस्नर आम सहित सब कनेक्ट हूँ आकाशवाणी को बहुत प्रशंसा करती आरजे मान को बहुत प्रशंसा
1: करते
0: थैंक यू थैंक यू तेरे कहतु आज टॉपिक उपर कौन कहे कौ सहर बहुत भल लगे बार बार जीवा
1: बहुत भल सहर पुरी
0: पुरी ओके
1: पुरी जगन्नाथ धाम मोर सबुठ फेवरेट सबुठ भल सब सहर मत भल लगे कि पुरी सहर मान से सांगसाथी हाँ फैमिली सह चार चकिया जीव कि कौन थर जी जो सांगसाथी चल बैक धरल चल
0: अच्छा मान सब जाती पुरी
1: प्राय सब प्राय टाइम जिते इच्छा है जाओ जगन्नाथ डोरी जिते लगे चलू
0: कौन स्मृति रही किसी गोटे मीठा स्मृति सेयार कले
1: पुरी प्रकृत दुई तीन वर्ष ते थे रथ जात्रा दिन रात कारण तापर दिन बजार बंद था मानने बलभद्र रथ दर्शन किणिली ठाकुर सुभद्रा रथ नड़िया किणी ठाकुर भोग कली कि जगन्नाथ रथ जात नड़िया किणी पर्स टा पछ पैकेट पुरे देली भोग कर भाई नागरिक विद्या की पर्सरे पर्स पैसा ना पर्स ना पर्स टोटल ना मो सा जो पिला अवश्य मुझे तेल जो गाड़ी मोर सब गोटे जिन प्लस पॉइंट मो गाड़ी दिटा गाड़ी तेल के अभाव रुहे सब टांकी फुल।

0: सबुथर को आमको से माने नुआ लागी थाए किछि नुआ जानिबा पई मिली थाए से सहर विषय रे तबे अपन माने हम सहित कनेक्ट होंदु फटाफट 0671-2303-153 ए नंबर रे स्मृति सहित। हेलो
1: हेलो शुभ सकाळ स्मृति मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार टुना भाईना हम सहित कनेक्ट हेइ चंदी
1: निश्चय
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तेज मुन्ना भाई कहतु सहर विषय कथा हूँ कौ सहर बेस भल लगे बार बार इच्छा
1: कह प्रथम कहते आज बांदेव भाई जशोदा भाजन तीरिशतम म्यारेज एनिवर्सरी हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना माँ गा के पाचन तीस वर्ष शहे वर्ष पालन करतु आजादी बांधव शुणे मिठाटा टे पठेदे खाई खुशी जी
0: गोटे गोटे हांडी मिठा पूरा जगत सिंहपुर पठेद सब बांटी बांटी की नहीं जीवे
1: जगत सिंह रेम्ब परिवार पठेदे समस्ते मिलमिशी खाए कहीं रेम्ब पर जन आम से सान भाई बड़े
0: ठीक अच्छा कहतु मुन्ना भाई सहर विषय कथ कौ सहर बेस भल लगे
1: विशेष कर मत ढेकाना सहर टा मत बहुत भल लगे कहीं देख मो पा बेला पाठ पढ़ा सब कटी मोर कहना मो जन्म कलिका कि मोर पा बेला पाठ पढ़ा सबकि कटी ढेकाना
0: अच्छा कलकत्ता रे आपण जन्म आपण घर
1: कलकत्ता मो जन्म गंगा नदी कूल फाका फाका थिलु एते स्मृति ना कहीं मो पा वर्ष दि वर्ष रही थी कि मोर सब पा पाठ पढ़िया कर्मभूमि जन्मभूमि कहले मो ढेकाना बोधे कहीं जहसुर मोर जन्मभूमि ना रही कि ढेकाना मो सबकि मानी
0: अच्छा ओके
1: बहुत स्मृति अच्छे मोर कि विशेष कर गोटे बड़ स्मृति कहते जो ढेकाना छाड़ी आसे उन्नीस एकानबे पांच वर्ष बाद जाइल उन्नीस सतानबे मसीहा फेब्रुआर दि तारीख रविवार
0: जाटा
1: मोर लास्ट जीवा ढेकाना अठाई अंतरीश आईडेट मोर कर पांच वर्ष बाद जाइली मत लोक एत मन कहीं से स्कूल टपर थी पा हिसाब से बहुत भल मत भल पाते पांच वर्ष मुझे गली से एरिया को पाखापाखि शहे दुश लोक आस मत हेरीगले
0: मानते
1: भल
0: पाए
1: स्नेह सदा भल पाइबा मुझे सहर बुझे कि ढेकाना से सहर भाला पाइन कौटी
0: ढेकाना सहर ने भी बहुत बढ़िया लगे मानते पहाड़िया पहाड़िया जगह टे कंस्ट्रक्शन गोटे अलग लगे ढेकाना
1: निश्चित सब चेज हो गया मुझे अठाशी अशी मसीह रु एक मसीह पर्यटन थे जो मोर दिन कटी से स्मृति सत कह मैडम जब ढेकाना छाड़ी मो जीवन बर्बाद सब कुछ पाई मान सम्मान पाठ पाठ सबकि सतान अवसर मुझे गली रविवार सोमवार दिन मुझे स्कूल पाठ पढ़े स्कूल गली बुलाया सार मैंने देखी दीदी मैंने देखे एत खुशी गले मो केवल गोटे चार तारीख पड़ता बुधवार मोपाई केवल छुट्टी सार मैंने निजे चंदा आदय कर मो स्वतंत्र फिस्ट गोटे देते
0: क्या बात है यार बड़ सम्मान आते कौ? खुशी कथा
1: देख क्या स्कूल टपर होती एमती की स्कॉलरशिप पाई अवश्य किसी कि आज पर्यटन मो टपर होना मुझे सतान अवसर जाइली तो स्कूल कई टपर है ना शहे को शहे मार्क रखी प्रत्येक सब्जेक्ट रे
0: बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आजी मुन्ना भाई आपण कथा शेयर कले बहुत बहुत धन्यवाद कॉल कर थी
1: बारा विषय करे बांदे भाई जदी सुन दे गोटे बड़ा हांडी मिठाटा पठे देले जाई के हम संग खाइबा
0: खाइबा ओके नियाती बाबरे अच्छा समय सरी सरी आसी 9:53 ऑलरेडी हो गला आ गोटे कल निहाती भाव में नापी चाहिए जे से सहर विषय कथा हो जो सहर स्मृति एबे भी मन पड़े एबे भी इच्छा हुए से सहर को जीवा पई आपण माने

0: मो सहित कनेक्ट होती देखा आज जन कलर आज शेष कलर किए अच्छा हेलो
1: हेलो
0: हाँ किए कह
1: गुगुली
0: गुगुली राजहंस कटक रु ओके फर्स्ट कॉलर माने नुआ नुआ कॉल करु चंदी
1: ना ना मु फर्स्ट टाइम करे कॉल कर थिली
0: हां जे स्मृति सहित फर्स्ट स्मृति सहित फर्स्ट टाइम कथा हो जो गुगली मु केबे कथा आइनी
1: ओके ओके हां ठीक है
0: अच्छा गुगली कोन करो
1: मु पाठ पढे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर कर छी
0: ओके अच्छा बढ़िया तबे एफएम रेनबो भल लगे सुनिबा पे सब बोले
1: हाँ काका आमर गोटे छोटिया रेडियो टे आनचोंती सेटा आमर 9टा बजले माने लगा हबो आ काका समस्तंगु सुनिबे
0: अच्छा खाली 9टा बजले लागु जी आ ता पुरपुरु लागु टिके पोरे लागुनी
1: नहीं जा पुरपुरु काम होछि ना के काम काम सारी कि 9टा गाधो पजा सारी ठाकुर पूजा हे जेते
0: हां
1: तो तापर 9टा काकांकर आमर सब स्टार्ट हबो
0: अच्छा ओके ठीक अछि के आमे चाहिबो जे सकाळ
1: बहुत बड फैन
0: हां अच्छा ना कोन
1: प्रशांत कुमार सिंह
0: ओके ठीक अच्छे रेनबो को सब बड़े शुणु मैंने सकाल डिवोशनल शो ठार आरंभ कर राति पर्यंत शुणे सब शो आपको बहुत भल लगे एंड विभिन्न टाइप रो सब रही तो आपको निहाती भाव भल लगे तेज गुगली फटाफट आम सहित कनेक्ट होती लास्ट कलर आज कहते कौ सहर बार बार जीप इच्छा हुए बहुत भल लगे सहर किसी मीठा स्मृति
1: मते तो खास करके जेहेतु भुवनेश्वर रे रही कि दिवस पड़ी दिल्ली तो मते भुवनेश्वर जीवा को बहुत भल लागे तो मु जयदेव बिहार रही पढ़ू दिल्ली तो मत लगे कि भुवनेश्वर एक्चुअली किसी मन दुख हेले कि किसी हेले कि मंदिर माने मंदिर मानी सहर तो टिके राम मंदिर पड़ेल लिंगराज मंदिर पड़ेल आदि मन किसी एंटरटेनमेंट कर पटिया स्क्वायर पड़ेल बुलिके खावा तो सब प्रकार फैसिलिटी
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत किसी अच्छी भुवनेश्वर रे सत कथा आ कटक भी अलग ना कटक टा भी गोटे डिफरेंट माने तार जो कटक टा जो कह पुरुणा कटक तार भी गोटे अलग चार्म अच्छी
1: किंतु भुवनेश्वर रही मुझे जान जे कटक सतरे मानते मिडिल क्लास फैमिली गोटे चलवा मानते गोटे बेस्ट प्लेस मैंने तुम किसी भी मन इच्छा गोटे कि भुवनेश्वर एवं प्रोब्लेम होता किसी ड्रेस ड्रेस कि सब हाई रेट
0: अच्छा पल जो एठी की एक नंबर दुई नंबर मार्केट अच्छी ना ओके गुगली बहुत बहुत धन्यवाद कॉल कर एंड लास्ट कॉल लगे ना आगे कथा था समय सरी सरी आसे ओके थैंक यू सो मच कॉल कर सो माय फ्रेंड्स आपण माने भी आम सहित कनेक्ट हेले एंड एबे कनेक्शन बंद हो जाउची कारण समय सरी आसला 9:56 ऑलरेडी हेगने डायलिन लाइफ शो को राउंड ऑफ करबा पई पड़िबो आछी गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक ए ट्रैक रु ही राउंड ऑफ करबा आज डायलिन लाइफ शो को आउ परे परे किछ समय परे आरंभ होइजबो आपण मानकर अनुरोध गीतर कार्यक्रम रेनबो एसएमएस

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग आप रे भी आपण माने हम सह कनेक्टेड अछंती। समय वर्तमान 10:00 ऑलरेडी हे गलेनी एंड ता साथे साथे आरंभ हे गलेनी आपण मानकर मोस्ट अवेटेड शो जहा को अपेक्षा करी की मीठा मीठा लव लेटर्स आपण माने पठाई छंती। अनुरोध रो गीत सुनिबा पाई यस रेनबो एसएमएस साउंड स्मृति आज रा सकल रे आपण मानक सहित रही छी सुनिबा आपण को आपण को मन पसंद रो गीत आ समय डेरी ओके आम सहित फर्स्ट व्हाट्सएप रे कनेक्ट होती समीर खटुआ नरसिंहपुर केन्द्रापड़ शुणापी चाहते गोटे ओडिया कथाचित्र गीत से गीत पातरे पात छंदा क्या बात है बहुत ही सुंदर गीत। ओके समीर भाई पहुंचा आपण को मन पसंद ब्यूटीफुल ट्रैक।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीतटे रिक्वेस्ट आसला एंड फर्स्ट गीत बहुत बढ़िया लगला। तबे चलंतु नेक्स्ट एसएमएस को देखिवा, नेक्स्ट लव लेटर्स के लिखी चंदी देखिवा। आम सहित कनेक्ट है चंदी व्हाट्सएप रे प्रेमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक रु एंड लिखी चंदी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सुनिवा पई चाही चंदी किशोर कुमार का कंठरे जूली 1975 फिल्म रो गोटे ब्यूटीफुल गीत दिल क्या करे एंड डेडिकेट करी चंदी टू यू एंड ऑल श्रोता।

बिल्कुल, जब प्यार हो जाता है तब दिल कहाँ बस में रहता है मेरे दोस्तों। ट्यून करी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाल 10:10 अलरेडी हेगलाणी रेनबो एसएमएस सोरे मु पढ़ुची आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर आपणक साथी स्मृति। ओके सो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस के करी छंदी आम सहित सुरक्षा सहाय सहयोग भवन सेक्टर 13 सीडीए कटक रु जोड़ी हे चंती डम्बरुधर। गुड मॉर्निंग टू ऑल लिखी चंती सुनिया पई चाही चंती गोटे ब्यूटीफुल ट्रक खून भरी मांग फिल्म रो गीत हस्ते हस्ते कट जाए रस्ते क्या बात है एंड डेडिकेट करी चंती समस्तन को।

बिल्कुल, ये गाना बहुत कुछ सिखाती है कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जो भी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आए क्यों ना हंस के ही मुस्कुराते ही आगे बढ़ जाना चाहिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो हमारे साथ और भी श्रोताएं जुड़े हुए हैं, टाटा स्टील प्लांट से हमसे कुछ श्रोताएं जुड़े हुए हैं। नमस्कार आवाज सेन स्मृति, नमस्कार स्मृति अपा आम सहित जोड़ी आवाज सेन, रोहित सेन, दीपक कुमार, राजकुमार भरद्वाज, विमल श्रीवास्तव, मनीष शर्मा टाटा स्टील रु सुनिया चाहते साथी फिल्म रा आज हम तुम सनम ये गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग स्मृति अपा, नमस्कार, जय जगन्नाथ, फुल मस्ती कर भल भल कथा कहते, थैंक यू सो मच, मु मस्ती करुच्ची केवल आपण मानी एंड एफ एम रेनबो जिते आम दिज मान लिस्नर्स स्मृति सहित जिते जुगलबंदी जमी जाए तो मस्ती तो हम ही हम, थैंक यू सो मच, कार्यक्रम भल लगु तेज आज बीवी मान वाइफ को आज हूँ हापी बाला बर्थडे से बहुत बहुत शुभकामना जनईदेपी एंड वाइफ से पदे लिखी प्यार भी तु दोस्ती भी तु गुस्सा भी तु माफी भी तु एक भी तु हजार भी तु मेरी इस जिंदगी के सफर में काफी भी तु, क्या बात है। तो शायद आवाज सेन जो हमको मैसेज कर रहे हैं उनकी वाइफ की ही आज उनकी हैप्पी वाला बर्थडे है, सो हमारे तरफ से भी उनको हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, बहुत ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए साथ ही फिल्म का ये सुंदर सा गाना पहुंच रहा है आपके पास।

सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक स्मृति रही आज सकाल आपण सहित सो चली रेनबो एसएमएस सो चलंतु नेक्स्ट अनुरोध गीत किए आमको रिक्वेस्ट कर लव लेटर्स पढ़ा आम सहित कनेक्ट होती हालू भाई सिया नाठगढ़ शुणापी चाहते कुली नंबर वन फिल्म गीत हु स्नेह सुहाना लिखले जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग अपा नमस्कार आज शुभ सकाल सब श्रोता मोर शुभकामना आज मु अनुरोध करुची गीतटे तेणु पसंद रीतट शुणीदे अनुरोध निहाती भाव शुणीदेबू हालू भाई सिया नाठगढ़ कुली नंबर वन फिल्म गीत स्नेहे सुहाना क्या बात है बहुत ही एनर्जेटिक गीत टी आसुची आपण मानक पाखक एंजॉय करंतु समस्ते।

ओके कम फास्ट डोंट बी स्लो सो से मत भी फर्स्ट फर्स्ट करने पड़ चुकी स्लो जमा भी हो पारे समय सरी सरी आसुची ना एंड आप केते सारा रिक्वेस्ट गीत सब पठे सो सुनील कांत महांती सिलू एंड आकृति देवकाली शंखतराज कटक रु आम सहित कनेक्ट होती लिखले आज शुभ सकाल जनई एंड रिक्वेस्ट सॉन्ग त्रिनाथ मेला ओडिया चलचित्र गीत हे ब्रह्म ये गीत टी शुणापी चाहती

रु वर्तमान कुंडीगा बछाड़ नाउगा जगतसिंहपुर लेखिले जयमा सारला सुदर तमिलनाडु राज्यर चेन्नई सहररु वर्षा विजा शुभ सकाळ सह नमस्कार स्मृति अपा तबे प्रति नमस्कार पूजा तमिलनाडु आमको सुनिछन्ति न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यमरे लेखिछन्ति समस्त श्रोता भाई भोनी मानको शुभ सकाळर शुभेच्छा सीडीए र दिवाकर भाईको बहुत बहुत धन्यवाद जे व्हाट्सएप नम्बर दैछन्ति आ सुदूरले रही कार्यक्रम सुनुची आप माध्यमरे जोठी रहिले भी रेडियो थी बोली वर्षा पूजा लिखी चंदी एंड अनुरोध गीत वर्षा रिलेटेड गीत टी सुने देवा पई अनुरोध करी चंदी हृदय रु भलो पाइबार सह समस्त को सब श्रोता भाई भोनी मानन को ई गीत टी को डेडिकेट मध्य करी चंदी पूजा महांती कुंडीगा बछाळ नाउगा जगतसिंहपुर ओरफ वर्तमान तमिलनाडु रु

सो नेक्स्ट एसएमएस रमेश चंद्र साहू अहुकमा भापुर ढिंकानाल आम सहित कनेक्ट होती शुणापी चाहती एकाश तुम कह दो कभी गीतटी को घर का चिराग फिल्म गीत गुड मॉर्निंग स्मृति मैम सुंदर उपस्थापना आपण को मो तरफ स्पेशल कंग्रेचुलेशन जनई रमेश चंद्र साहू अहुकमा भापुर ढिंकानाल थैंक यू सो मच यही बाजिला आपण मनपसंद गीत फटाफट शुणु

सुनी जाती आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग आप रे भी आपण माने हम सह कनेक्टेड अछंते साथी तबे आपण माने जदि हम को व्हाट्सएप करबा पई चाहु चंती ताले व्हाट्सएप नंबर टीटीपी रखंतु 8895254200 8895254200 ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करि परिबे आपण मानकर अनुरोध रो गीत को फिल्म रो गीत से फिल्म रो को गीत टी आपण सुनिबा पई चाहु छंती ओडिया हिंदी बोथ एंड आपण को ना एड्रेस रे पठे दियंतु हम पाखो को व्हाट्सएप नंबर रे तबे एटी कहि रखु छु वर्तमान जो माने रेनबो एसएमएस शो रे आपण को अनुरोध रो गीत सुनी पारु नाहंती तबे संध्या बेले पूणी थरे दुई थरे लेखे रेनबो एसएमएस रो शो आसु छि आपण मानक पाखो को निहाति भाव रे कोठी ना कोठी आपण को गीत प्ले हबो एंड आपण सुनिबे जमा भी धैर्य हरा हुंतुनी तेब आम सहित चौद्वार ओस्तपुर रु कनेक्ट होती रीना साहू कनेक्ट होती एंड बहुत धैर्य हरा सी सॉन्ग सुनवाई चाहती पगल करी पाउजी तोरो ए फिल्म रो गीत झील चली जाए शाशुघर गीत टी लिखिले दी गुड मर्णिंग प्रोग्राम टे बहुत भल लगुच चौद्वार ओस्तपुर रु रीना साहू

ओके सो नेक्स्ट एसएमएस कल्पना महांति सोम प्रकाश भारत चंद्र नायक सीडी सेक्टर सिक्स कटक रु आम सहित कनेक्ट होती गुलामी फिल्म रीत जिहाल मुस्किल ओके मुस्किन तो ये गीत टी शुणापी चाहती लेकिन नमस्कार जय जगन्नाथ।

सो माय फ्रेंड्स सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी रेनबो एसएमएस स्मृति पड़ छी अपन मनकर मीठा मीठा लव लेटर्स एंड प्ले करू छी अपन को मन पसंद रा गीत तबे क्या करे यार समय सरी सरी असलेनी 10:55 ऑलरेडी हे गलानी आ गोटी गीत ही मु प्ले करी परबी हम सहित कनेक्ट हेई चंदी दिबाकर सेठी सेक्टर 6 सीडी कटक रु लेखले जय जगन्नाथ एंड गीत मोर मन उड़ी उड़ी जाय रे गीत डी सुनिया पई जाय जदे सुना पंचुरी ओडिया चलचित्र रो गीत डेडिकेट कर छंदी to you thank you and ta sahit urmila bhouni kitesh bhai premji bhai sandhya oppa and tanko mrs puo jhio au tankara seithi samasta dokani bandhu mananku se ei gita tiku anurodh ra gita tiku dedicate karichanti tebe chalantu udi udi ki ei gita pahunchu chi apan mananku pakaku and smruti ku madhya diantu bidha parvarti rj au kichi samay pare apan mananku sahit connect hei jibe emte sunu thantu air fm rainbow katak 100.4 dil se dil tak

ତମର ସାନଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ସତରେ ମନର ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ କହି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଣ୍ଟିଜର ସେ ବଲିଉଡକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ ସଙ୍ଗ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दो दिल मिल रहे है, एक लड़की को देखा परी सॉन्ग आज भी एवरग्रीन। कुमार सानुंकर सबुठारु बड़ विशेषण हेउची तांकर मेलोडी आउ तांकर फिलिंग्स। से जो भी गीत गाँव ना कहेंगे सब गीत पूरा हृदय को छुंजाए, से फैन मैंने मेलोडी किंग बोली जानती। तेरे चलते शुणी ना आउ गोटे गीत टी शुणु आउ कहु दिल से दिल तक।

0: अब तेरे बिन मेरा दिल भी कितना पागल है, ये काली काली आंखें सोचे कि तुम्हें प्यार, एक लड़के को देखा तो जाना सनम परी, सॉन्ग पाई से ये सब सम्मान पाई थी ले। केवल सेतिक नुहे सदी कुमार सानुंकर भारत सरकार को पक्षरु पद्मश्री भली गरिमामय सम्मान मध्य से पाई। तबे आगुकु तो तांको विषय रे कथाबार्ता जारी रहिबो, किंतु एबे चलंतु सुने तो छि तांको फिल्म रो आउ गटे सुपर हिट गाना। तबे सुनु तांतु आउ गीतर ताळे ताळे पूरा छुमी जांतु।
1: शिखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

तेबे साथी एतथिला कुमार सानंकर सूरीला चनी रखिछि सुंदर कथा आज त समय हे गलाणी कलाकार सोखु एठी रखुछि पुणी थरे आसीबी आउ जणी कलाकार को कहानी को नै खास आपण मानक पाई।

प्रस्तुतन करिछंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कट दिल से दिल तक टक भी ट्यून भी सब किछि गोटी सोरे फुल एंड मस्ती फुल अप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन किछि कथा किछि गीतरे आ मु अछि मोनालिसा आपनक साथी रे आज हमें ढेर सारा कथा बा गीत मध्य शुणा किछि कथा किछि गीतरे

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सो चली किसी कथा किसी गीत अच्छी मोनालिसा आपण आपण चुपचाप अच्छा बाहर पूरा शांत किंतु भीतर चली अनेक कथा से टाइम टे माने से टाइम रे जदि रेडियो रे गोटे गीत सुनी मन हुए से गीत आपण मन को पढ़ी देछि सेथिपाई तो कहा जाए गीत केवल एक सुरर संभार नुहे एहा गोटे अनुभूति आउ गोटे सुंदर भावना

फास्ट क्रश फास्ट लव फ्रेंडशिप विरह एमती प्रत्येक मुहूर्त में थाए गोटे गोटे सुंदर म्यूजिक सेथिपाई आमे सबु आम लाइफ स्टोरी रो गोटे गोटे हीरो आउ गोटे हीरोइन तेबे साथी जेबे सॉन्ग टा सुनिबे ना टिके फील करिबे हे परे सेथिरे आपण निज कहानी को खोजि परिबे कारण प्रत्येक गीत रे गोटे कहानी लुचि थाए आउ से कहानी आपणकर मध्य होइ परे से मेमोरी को माने बहुत सारा मेमोरी आपणकर ताजा कर दिए तेबे साथी से मेमोरी रे टिके हजि जानतु आउ खुशी रे हसी दियंतु देखिबे केते हल्का लागिबो

तेबे साथी कथारे कथारे गीतरे गीतरे समय केतबेले जे सरी सरी आसिलानी जमा भी जणा पडुनी तेबे साथी आज त समय हे गलानी किछे कथा किछे गीत सोकु एठ रखुची किंतु पुणी आसीबे आउ किछे कहानी को नै से पर्यंत हसंतु खुसरे रुहंतु आउ लाइफ रो सब मोमेंट को एन्जॉय करंदो।

मतदाता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा।

0: रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।